0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है 2025 में दादा दादियों और बुजुर्गों के लिए संत पापा लियो का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें संत अन्ना और संत ज्वाकिम पर्व के अवसर पर 2025 माता कलीसिया द्वारा स्थापित दादा दादियों और बुजुर्गों के 5वें विश्व दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा था कि आशा हमारे लिए निरंतर एक खुशी का उद्गम बनती है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। उस आशा को जब लंबी उम्मीद की चाह स्वरूप आग में तपाई जाती है तो वह हमारे लिए एक गहरी खुशी का स्रोत बनती है। बुजुर्गों को दिए गए अपने संदेश में संत पापा लियो ने कहा कि पवित्र धर्म ग्रंथ हमारे लिए इसका अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिन्हें ईश्वर ने अपने जीवन की बढ़ती आयु में अपनी मुक्ति योजना का अंग बनाया। हम अब्राहम और सारा के उम्र के बारे में विचार कर सकते हैं, जो ईश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास करने हेतु कठिनाई का अनुभव करते हैं कि उन्हें एक पुत्र मिलेगा। उनकी संतानहीनता उन्हें भविष्य के लिए आशाहीन बना देती है। योहान बपतिस्ता के जन्म संदेश के संबंध में भी जकरिया को ऐसा ही प्रतीत होता है। यह कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी पत्नी की उम्र ढल चुकी है। बुजुर्ग अवस्था, बांझपन और शारीरिक ढलान इन नर नारियों में जीवन के प्रति आशा और उर्वरकता को धूमिल कर देती है। निकोदेमुस के द्वारा यीशु को पूछे गए सवाल में स्वामी का पुनः जन्म लेने की बात हमारे लिए अलंकार पूर्ण लगता है। बुढ़ापे में एक व्यक्ति पुनः कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह दूसरी बार अपनी माता के गर्भ में प्रवेश कर पुनः जन्म ले सकता है? यद्यपि जब कभी हम यह सोचते कि चीजें नहीं बदली जा सकती हैं, ईश्वर हमें अपने मुक्ति की शक्ति से आश्चर्यचकित करते हैं। संत पापा लियो ने अपने संदेश में कहा कि ईश्वर निरंतर अपनी दिव्य शक्ति को लोगों की बढ़ती आयु में प्रदर्शित करते हैं। ऐसा केवल अब्राहम और सारा, जकरियस और एलिजाबेथ के संग नहीं होता है, लेकिन हम इसे मूसा के साथ भी घटित होता पाते हैं, जिन्हें ईश्वर अपने लोगों की मुक्ति हेतु 80 साल की आयु में बुलाते हैं। ईश्वर इस भांति हमें यह शिक्षा देते हैं कि उनकी दृष्टि में बुजुर्गावस्था कृपा और आशीष का एक समय है और बुजुर्ग जन उनके लिए आशा के प्रथम साक्षी हैं। संत अगुस्टिन कहते हैं, अपनी शक्ति को क्षीण होने दो, जिससे मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर वास करे और तुम प्रेरित के संग कह सको, जब मैं कमजोर हूँ तो मैं अपने में शक्तिशाली हूँ। लोगों का उम्र में बढ़ना हमारे लिए एक निशानी है कि हम आत्मपरख करने हेतु बुलाए गए हैं, जिससे हम इतिहास के इस क्षण को अनुभव कर सकें। संत पापा लियो ने अपने संदेश में आगे कहा कि कलीसिया और दुनिया को हम पीढ़ियों के ज्योति रूपी आड़ में समझ सकते हैं। बुजुर्ग अवस्था का आलिंगन करना हमारे लिए इस बात को समझने में मदद करता है कि जीवन वर्तमान पड़ाव से बढ़कर है, जिसे हम पिछली चीजों और व्यर्थ के संबंधों में नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बदले में जीवन सदैव भविष्य की ओर इंगित करता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम याकूब के द्वारा अपने नाती पोतों को योसेफ के संतानों को दिए गए आशीर्वाद की चर्चा सुनते हैं। वे उन्हें भविष्य की ओर आशा में देखने की अपील करते हैं, जहां ईश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। यदि यह सच है कि कमजोर बुजुर्गों को युवा शक्ति की जरूरत हो, तो यह उतनी ही सच्चाई है कि अनुभवहीन युवाओं को बुजुर्गों के अनुभव रूपी साक्ष्य की आवश्यकता है, जिससे वे विवेक में भविष्य का निर्माण कर सकें। कितनी बार हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे लिए भक्ति, सामाजिक गुण और निष्ठा, यादों और परीक्षा की घड़ी में धैर्य के उदाहरण बनते हैं। उनके द्वारा आशा और प्रेम में मिली मूल्यवान विरासत हमारे लिए सदैव कृतज्ञता और धैर्य में बने रहने का एक स्रोत बनता है। संत पापा लियो कहते हैं, हम बुजुर्गों की सेवा करने को बुलाए जाते हैं, जिससे वे मुक्ति का अनुभव कर सकें। विशेषकर अकेलेपन और छोड़ दिए गए भाव से बुजुर्गावस्था कृपा की स्थिति है, जहां उदासीनता से दूर हम उनकी सेवा करते हुए सुसमाचार की खुशी का अनुभव करते हैं। इस संदर्भ में संत पापा हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हैं कि हर पल्ली संघ और कलिसियाई दल को चाहिए कि वे अपने में अगुवे बने एक आंदोलन की, जिसमें कृतज्ञता और सेवा के भाव हों, जहां हम बुजुर्गों की निरंतर भेंट करते हों, उनके लिए तथा उनके संग प्रार्थना और सेवा के तंत्र स्थापित करते हों। हम परित्यक्त जनों के संग संबंध स्थापित करते हों, जिससे वे आशा और मानवीय सम्मान का अनुभव करें। ख्रिस्तीय विश्वास हमें अधिक साहसी, बड़ा सोचने और वर्तमान चीजों से असंतुष्ट होने को प्रेरित करता है। यह हमें परिवर्तन हेतु कार्य करने की मांग करता है, जिससे बुजुर्गों को प्रेम और सम्मान मिल सके, जिसके वे हकदार हैं। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा, प्रवक्ता ग्रंथ की पुस्तिका हमें कहती है कि धन्य है वे जिन्होंने आशा नहीं खोया है। यदि जीवन की अवधि हमारी लंबी होती है, तो शायद भविष्य को हम नहीं बल्कि अतीत की बातों को देखते हैं। अपने अस्पताल में रहने के दौरान संत पापा फ्रांसिस इस संदर्भ में लिखते हैं, हमारे शरीर कमजोर हैं, लेकिन फिर भी हम में प्रार्थना, प्रेम करने, अपने को देने, एक दूसरे के संग साझा होने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। जहाँ विश्वास में हम सदैव आशा में चमकते हैं, हम अपने में एक स्वतंत्रता को वहन करते हैं, जिसे कोई भी मुसीबत हमसे छीन नहीं सकती है। यह हमारे लिए प्रेम और प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है। हर कोई सदैव प्रेम और प्रार्थना कर सकता है। अपने प्रेम करने वालों के लिए हमारा स्नेह, पति या पत्नी के लिए जिनके संग हमने लंबा जीवन व्यतीत किया है, हमारे बच्चे, नाती पोते जो हमारे दिनों को प्रज्वलित करते हैं, हमारे शक्तिहीन होने पर भी धूमिल नहीं होते हैं। वास्तव में उनका स्नेह सदैव हमारे लिए शक्ति का कारण बनता और हमें आशा और सांत्वना से भर देता है। संत पापा लियो चौदहवें अपने संदेश के अंत में कहते हैं, प्रेम की इन निशानियों में हम अपने को ईश्वर में आधारित पाते हैं, जो हमें साहस प्रदान करता और हमें इस बात की याद दिलाता है, जो भी कि हमारा बाह्य स्वरूप खत्म होता है, हमारा आंतरिक स्वरूप सदैव नवीन होता है, विशेषकर जब हम बुढ़ापे को प्राप्त करते हैं। आइए हम ईश्वर में अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। हम प्रार्थना और मिस्सा में उनसे मिलने द्वारा अपने को नवीन करें। हम अपने विश्वास को प्रेम से दूसरों के लिए बांटें, जिसे हमने इतने सालों तक जिया है, अपने परिवारों में और दूसरों के संग अपनी मुलाकात में। हम सदैव ईश्वर के भले कार्यों के लिए कृतज्ञ बने रहें, अपनों के संग एकता में बने रहें, अपने हृदय उनके लिए खोलें जो हमसे दूर चले गए हैं, और विशेषकर उनके लिए जो जरूरतमंद हैं। इस भांति हम दूसरों के लिए आशा के निशाने बनेंगे, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है समाचार। दुनिया के संकट प्रभावित हिस्सों से बच्चों और युवाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय गायक मंडल संत पापालियो 14वें और अंद्रेया बोचेली के साथ मिलकर आज रात 9:30 बजे बोर्गो लौदातो सी में शांति की प्रार्थना के लिए समय समर्पित करेगा, जिसमें शांति की सार्वभौमिक भाषा के रूप में संगीत का उपयोग किया जाएगा। लौदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र और अंद्रेया बोचेली संस्थान इसकी अगुवाई करेंगे। यह कार्यक्रम शांति का गीत संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु के 800वें साल पूरे होने के समारोह का हिस्सा है। संत पापालियो 14वें संत फ्रांसिस के प्राणियों के गीत के टेक्स्ट से प्रेरणा लेते हुए दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना और चिंतन के पल का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में सबसे जरूरी हिस्सों में से एक म्यूजिक होगा। पवित्र भूमि युगांडा, हैती और इटली से 160 से ज्यादा युवा संगीतकार अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि और कहानियों को साथ लाएंगे, जो अक्सर युद्ध, गरीबी और चुनौतियों से जुड़ी होती है। हालांकि उनकी आवाजें म्यूजिक और कला की ताकत का सबूत हैं, जो बातचीत, उम्मीद और मेल मिलाप की भाषा है, जिन्हें दुनिया भर में समझा जाता है। क्वायर में अपने अनुभव के जरिए बच्चे और युवा आपसी समझ, एक सामान्य मकसद और मुलाकात की अहमियत को फिर से जान सकते हैं। संत पापा के साथ प्रार्थना और म्यूजिक का यह समय 10 दिन की उस मीटिंग का अंत है, जिसने पहली बार वैश्विक गांव की भावना से म्यूजिक के जरिए क्वायर और शिक्षकों को जोड़ा। प्रार्थना कार्यक्रम के अंत में हर देश के क्वायर प्रतिनिधि संत पापा को अपने देश का हाथ से बना तोहफा देंगे, जो उसकी संस्कृति पहचान दिखलाएगा और दल का शुक्रिया अदा करेगा। उधर संत पापालियो 14वें के परोपकार के कार्य, जो उदार सेवा के लिए गठित विभाग के जरिए किया जाता है, इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। यूक्रेन और मध्य पूर्व जैसे युद्ध से तबाह इलाकों को लगातार समर्थन देने के साथ साथ यह सभी 5 महाद्वीपों में मानवीय मदद पहुंचाना जारी रखता है। दान में देरी नहीं की जा सकती। संत पापालियो 14वें ने 6 जून को स्पेन की अपनी प्रेरितिक यात्रा के पहले दिन मैड्रिड में सेडिया 24 होरेस सोशल प्रोजेक्ट के स्टाफ और लाभार्थियों से ये बात कही। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहे, अब ये इंसानी चेहरे ले लिए हैं। संत पापा के अल्मोनेर अगुस्टीनियन महाधर्माध्यक्ष लुइस ने वाटिकन न्यूज को बताया कि एकजुटता कोई सीमा नहीं जानती और यह राष्ट्रवाद से बंधी नहीं है। इसे वहां पहुंचना चाहिए जहां दुख और तुरंत जरूरत हो। इसलिए हम यह पक्का करते हैं कि यह तेज, व्यवहारिक और अच्छी तरह से समायोजित हो, जिसमें सबसे गरीब लोगों पर ध्यान दिया जाए, ताकि वे संत पापा के नज़दीकी और कोमलता का अनुभव कर सकें, कलीसिया के प्यार भरे आलिंगन के रूप में जो उनका साथ देता है और उन्हें सहारा देता है। संघर्ष शुरू होने के बाद से ही विभाग के जरिए भेजी गई मानवीय मदद ने युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के लोगों के साथ साथ गाजा पट्टी और लेबनान के लोगों की लगातार मदद की है। उनकी मदद की कोशिशें यूरोप और मध्य पूर्व से लेकर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक दुख तकलीफों की दुनिया को बिना किसी भेदभाव के पक्के इरादे से देखती है। यह एक ऐसा नक्शा है जिसमें भूकंप और चक्रवात, सूखा और बाढ़ तो है ही, साथ ही रोजमर्रा की हिंसा, छोड़े गए बच्चे और सिर्फ खाना ढूंढने के लिए जूझ रहे परिवार भी हैं। उधर कल स्थानीय समय अनुसार शाम करीब 4:30 बजे दक्षिण पश्चिमी जापान में आए 7.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप में मरने वालों की शुरुआती संख्या बढ़कर कम से कम 13 हो गई है और करीब 100 लोग घायल हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर राजधानी टोक्यो के करीब 900 किलोमीटर दूर कुश्यू द्वीप में कुमामोटो इलाके में पड़ा। जापान की हालात के बारे में प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने अपने आधिकारिक बयान में बताया, अब तक 13 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन करीब 30 लापता लोगों को ढूंढने के लिए अभी भी तलाश जारी है।
दोनों जगहों पर जहां काशीमा शहर में एयान मॉल शॉपिंग सेंटर था जो कल भूकंप में ढह गया और पेपर मिल जहां एक चिमनी गिर गई थी, कुमामोटो स्टेशन में एक ट्रेन पटरी से उतर गई और एक तरफ लुढ़क गई। साथ ही शहर के किले की दीवारों के गिरने की भी पुष्टि मिली है। इसके अलावा कई आग लगने की खबरें आई हैं। साथ ही बिजली जाने के कारण 40,000 परिवारों के पास बिजली नहीं है और सड़कों एवं हवाई अड्डे को नुकसान हुआ है जो सुरक्षा कारणों से बंद है। उधर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात हुई। खबर है कि यह मुलाकात पिछले महीनों की तुलना में कम तनावपूर्ण थी, लेकिन दोनों ने सुलह की बात की। ट्रंप ने इस मुलाकात को बहुत सकारात्मक कहा और बताया कि कई जरूरी मुद्दों पर बात हुई। अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक समझौता, जिसका मकसद ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमले रोकना था ताकि नई बातचीत हो सके, कुछ ही दिनों तक चला। रातों रात तेहरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला किया। पेंटागन के मुताबिक सभी मिसाइलों को रोक दिया गया, लेकिन इस कार्यवाही से लड़ाई में नई तेजी आई। जवाब तेज था। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के सूत्रों के अनुसार अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया पर छापे मारे, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए। उधर मोजाम्बिक में लगभग 5 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यह सभी के लिए शिक्षा आंदोलन MEPT के अध्ययन के अनुसार है, जिसे मापीटो में सामाजिक और आर्थिक अध्ययन संस्थान IESE के साथ मिलकर किया गया था। इस अध्ययन में उन मुश्किलों पर जोर दिया गया है जो शिक्षा मंत्रालय के पहले से दिए गए तरीकों के बावजूद स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को स्कूल में बनाए रखने और फिर से जोड़ने में होती हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

Benedictus es

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है 2025 में दादा दादियों और बुजुर्गों के लिए संत पापा लियो का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें संत अन्ना और संत ज्वाकिम पर्व के अवसर पर 2025 माता कलिसिया द्वारा स्थापित दादा दादियों और बुजुर्गों के 5वें विश्व दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा था कि आशा हमारे लिए निरंतर एक खुशी का उद्गम बनती है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। उस आशा को जब लंबी उम्मीद की चाह स्वरूप आग में तपाई जाती है तो वह हमारे लिए एक गहरी खुशी का स्रोत बनती है। बुजुर्गों को दिए गए अपने संदेश में संत पापा लियो ने कहा कि पवित्र धर्म ग्रंथ हमारे लिए इसका अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिन्हें ईश्वर ने अपने जीवन की बढ़ती आयु में अपनी मुक्ति योजना का अंग बनाया। हम अब्राहम और सारा के उम्र के बारे में विचार कर सकते हैं, जो ईश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास करने हेतु कठिनाई का अनुभव करते हैं कि उन्हें एक पुत्र मिलेगा। उनकी संतानहीनता उन्हें भविष्य के लिए आशाहीन बना देती है। योहान बपतिस्ता के जन्म संदेश के संबंध में भी जकराया को ऐसा ही प्रतीत होता है। यह कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी पत्नी की उम्र ढल चुकी है। बुजुर्ग अवस्था, बांझपन और शारीरिक ढलान इन नर नारियों में जीवन के प्रति आशा और उर्वरकता को धूमिल कर देती है। निकोदेमुस के द्वारा यीशु को पूछे गए सवाल में स्वामी का पुनः जन्म लेने की बात हमारे लिए अलंकारपूर्ण लगता है। बुढ़ापे में एक व्यक्ति पुनः कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह दूसरी बार अपनी माता के गर्भ में प्रवेश कर पुनः जन्म ले सकता है? यद्यपि जब कभी हम यह सोचते कि चीजें नहीं बदली जा सकती हैं, ईश्वर हमें अपने मुक्ति की शक्ति से आश्चर्यचकित करते हैं। संत पापा लियो ने अपने संदेश में कहा कि ईश्वर निरंतर अपनी दिव्य शक्ति को लोगों की बढ़ती आयु में प्रदर्शित करते हैं। ऐसा केवल अब्राहम और सारा, जकरियस और एलिजाबेथ के संग नहीं होता है, लेकिन हम इसे मूसा के साथ भी घटित होता पाते हैं, जिन्हें ईश्वर अपने लोगों की मुक्ति हेतु 80 साल की आयु में बुलाते हैं। ईश्वर इस भांति हमें यह शिक्षा देते हैं कि उनकी दृष्टि में बुजुर्गावस्था कृपा और आशीष का एक समय है और बुजुर्ग जन उनके लिए आशा के प्रथम साक्षी हैं। संत अगुस्टिन कहते हैं, अपनी शक्ति को क्षीण होने दो, जिससे मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर वास करे और तुम प्रेरित के संग कह सको, जब मैं कमजोर हूँ तो मैं अपने में शक्तिशाली हूँ। लोगों का उम्र में बढ़ना हमारे लिए एक निशानी है कि हम आत्म परख करने हेतु बुलाए गए हैं, जिससे हम इतिहास के इस क्षण को अनुभव कर सकें। संत पापा लियो ने अपने संदेश में आगे कहा कि कलिसिया और दुनिया को हम पीढ़ियों के ज्योति रूपी आड़ में समझ सकते हैं। बुजुर्ग अवस्था का आलिंगन करना हमारे लिए इस बात को समझने में मदद करता है कि जीवन वर्तमान पड़ाव से बढ़कर है, जिसे हम पिछली चीजों और व्यर्थ के संबंधों में नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बदले में जीवन सदैव भविष्य की ओर इंगित करता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम याकूब के द्वारा अपने नाती पोतों को योसेफ के संतानों को दिए गए आशीर्वाद की चर्चा सुनते हैं। वे उन्हें भविष्य की ओर आशा में देखने की अपील करते हैं, जहां ईश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। यदि यह सच है कि कमजोर बुजुर्गों को युवा शक्ति की जरूरत हो, तो यह उतनी ही सच्चाई है कि अनुभवहीन युवाओं को बुजुर्गों के अनुभव रूपी साक्ष्य की आवश्यकता है, जिससे वे विवेक में भविष्य का निर्माण कर सकें। कितनी बार हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे लिए भक्ति, सामाजिक गुण और निष्ठा, यादों और परीक्षा की घड़ी में धैर्य के उदाहरण बनते हैं। उनके द्वारा आशा और प्रेम में मिली मूल्यवान विरासत हमारे लिए सदैव कृतज्ञता और धैर्य में बने रहने का एक स्रोत बनता है। संत पापा लियो कहते हैं, हम बुजुर्गों की सेवा करने को बुलाए जाते हैं, जिससे वे मुक्ति का अनुभव कर सकें। विशेषकर अकेलेपन और छोड़ दिए गए भाव से बुजुर्गावस्था कृपा की स्थिति है, जहां उदासीनता से दूर हम उनकी सेवा करते हुए सुसमाचार की खुशी का अनुभव करते हैं। इस संदर्भ में संत पापा हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हैं कि हर पल्ली संघ और कलिसियाई दल को चाहिए कि वे अपने में अगुवे बने एक आंदोलन की, जिसमें कृतज्ञता और सेवा के भाव हों, जहां हम बुजुर्गों की निरंतर भेंट करते हों, उनके लिए तथा उनके संग प्रार्थना और सेवा के तंत्र स्थापित करते हों। हम परित्यक्त जनों के संग संबंध स्थापित करते हों, जिससे वे आशा और मानवीय सम्मान का अनुभव करें। ख्रिस्तीय विश्वास हमें अधिक साहसी, बड़ा सोचने और वर्तमान चीजों से असंतुष्ट होने को प्रेरित करता है। यह हमें परिवर्तन हेतु कार्य करने की मांग करता है, जिससे बुजुर्ग

नहीं सकता है। जहां विश्वास में हम सदैव आशा में चमकते हैं, हम अपने में एक स्वतंत्रता को वहन करते हैं जिसे कोई भी मुसीबत हमसे छीन नहीं सकती है। यह हमारे लिए प्रेम और प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है। हर कोई सदैव प्रेम और प्रार्थना कर सकता है। अपने प्रेम करने वालों के लिए, हमारा स्नेह पति या पत्नी के लिए जिनके संग हमने लंबा जीवन व्यतीत किया है, हमारे बच्चे नाती पोते जो हमारे दिनों को प्रज्वलित करते हैं, हमारे शक्तिहीन होने पर भी धूमिल नहीं होते हैं। वास्तव में उनका स्नेह सदैव हमारे लिए शक्ति का कारण बनता और हमें आशा और सांत्वना से भर देता है। संत पापा लियो 14वें अपने संदेश के अंत में कहते हैं, प्रेम की इन निशानियों में हम अपने को ईश्वर में आधारित पाते हैं जो हमें साहस प्रदान करता और हमें इस बात की याद दिलाता है जो भी कि हमारा बाह्य स्वरूप खत्म होता है, हमारा आंतरिक स्वरूप सदैव नवीन होता है, विशेषकर जब हम बुढ़ापे को प्राप्त करते हैं। आइए हम ईश्वर में अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। हम प्रार्थना और मिस्सा में उनसे मिलने द्वारा अपने को नवीन करें। हम अपने विश्वास को प्रेम से दूसरों के लिए बांटें जिसे हमने इतने सालों तक जिया है, अपने परिवारों में और दूसरों के संग अपनी मुलाकात में। हम सदैव ईश्वर के भले कार्यों के लिए कृतज्ञ बने रहें, अपनों के संग एकता में बने रहें, अपने हृदय उनके लिए खोलें जो हमसे दूर चले गए हैं और विशेषकर उनके लिए जो जरूरतमंद हैं। इस भांति हम दूसरों के लिए आशा के निशाने बनेंगे, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है समाचार। दुनिया के संकट प्रभावित हिस्सों से बच्चों और युवाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय गायक मंडल संत पापा लियो 14वें और अंद्रेया बोचेली के साथ मिलकर आज रात 9:30 बजे बोर्गो लौदातो सी में शांति की प्रार्थना के लिए समय समर्पित करेगा, जिसमें शांति की सार्वभौमिक भाषा के रूप में संगीत का उपयोग किया जाएगा। लौदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र और अंद्रेया बोचेली संस्थान इसकी अगुवाई करेंगे। यह कार्यक्रम शांति का गीत संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु के 800वें साल पूरे होने के समारोह का हिस्सा है। संत पापा लियो 14वें संत फ्रांसिस के प्राणियों के गीत के टेक्स्ट से प्रेरणा लेते हुए

दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना और चिंतन के पल का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में सबसे जरूरी हिस्सों में से एक म्यूजिक होगा। पवित्र भूमि युगांडा, हैती और इटली से 160 से ज्यादा युवा संगीतकार अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि और कहानियों को साथ लाएंगे, जो अक्सर युद्ध, गरीबी और चुनौतियों से जुड़ी होती है। हालांकि उनकी आवाजें म्यूजिक और कला की ताकत का सबूत हैं, जो बातचीत, उम्मीद और मेल मिलाप की भाषा है, जिन्हें दुनिया भर में समझा जाता है। क्वायर में अपने अनुभव के जरिए बच्चे और युवा आपसी समझ, एक सामान्य मकसद और मुलाकात की अहमियत को फिर से जान सकते हैं। संत पापा के साथ प्रार्थना और म्यूजिक का यह समय 10 दिन की उस मीटिंग का अंत है, जिसने पहली बार वैश्विक गांव की भावना से म्यूजिक के जरिए क्वायर और शिक्षकों को जोड़ा। प्रार्थना कार्यक्रम के अंत में हर देश के क्वायर प्रतिनिधि संत पापा को अपने देश का हाथ से बना तोहफा देंगे, जो उसकी संस्कृति पहचान दिखलाएगा और दल का शुक्रिया अदा करेगा। उधर संत पापा लियो 14वें के परोपकार के कार्य, जो उदार सेवा के लिए गठित विभाग के जरिए किया जाता है, इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। यूक्रेन और मध्य पूर्व जैसे युद्ध से तबाह इलाकों को लगातार समर्थन देने के साथ साथ यह सभी 5 महाद्वीपों में मानवीय मदद पहुंचाना जारी रखता है। दान में देरी नहीं की जा सकती। संत पापा लियो 14वें ने 6 जून को स्पेन की अपनी प्रेरितिक यात्रा के पहले दिन मैड्रिड में सेडिया 24 होरेस सोशल प्रोजेक्ट के स्टाफ और लाभार्थियों से ये बात कही। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहे, अब ये इंसानी चेहरे ले लिए हैं। संत पापा के अल्मोनेर अगुस्टीनियन महाधर्माध्यक्ष लुइस ने वाटिकन न्यूज को बताया कि एकजुटता कोई सीमा नहीं जानती और यह राष्ट्रवाद से बंधी नहीं है। इसे वहां पहुंचना चाहिए जहां दुख और तुरंत जरूरत हो। इसलिए हम यह पक्का करते हैं कि यह तेज, व्यवहारिक और अच्छी तरह से समायोजित हो, जिसमें सबसे गरीब लोगों पर ध्यान दिया जाए, ताकि वे संत पापा के नज़दीकी और कोमलता का अनुभव कर सकें, कलीसिया के प्यार भरे आलिंगन के रूप में जो उनका साथ देता है और उन्हें सहारा देता है। संघर्ष शुरू होने के बाद से ही विभाग के जरिए भेजी गई मानवीय मदद ने युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के लोगों के साथ साथ गाजा पट्टी और लेबनान के लोगों की लगातार मदद की है। उनकी मदद की कोशिशें यूरोप और मध्य पूर्व से लेकर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक दुख तकलीफों की दुनिया को बिना किसी भेदभाव के पक्के इरादे से देखती है। यह एक ऐसा नक्शा है जिसमें भूकंप और चक्रवात, सूखा और बाढ़ तो है ही, साथ ही रोजमर्रा की हिंसा, छोड़े गए बच्चे और सिर्फ खाना ढूंढने के लिए जूझ रहे परिवार भी हैं। उधर कल स्थानीय समय अनुसार शाम करीब 4:30 बजे दक्षिण पश्चिमी जापान में आए 7.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप में मरने वालों की शुरुआती संख्या बढ़कर कम से कम 13 हो गई है और करीब 100 लोग घायल हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर राजधानी टोक्यो के करीब 900 किलोमीटर दूर कुश्यू द्वीप में कुमामोटो इलाके में पड़ा। जापान की हालात के बारे में प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने अपने आधिकारिक बयान में बताया, अब तक 13 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन करीब 30 लापता लोगों को ढूंढने के लिए अभी भी तलाश जारी है। दोनों जगहों पर जहां काशिमा शहर में एयान मॉल शॉपिंग सेंटर था, जो कल भूकंप में ढह गया, और पेपर मिल जहां एक चिमनी गिर गई थी, कुमामोटो स्टेशन में एक ट्रेन पटरी से उतर गई और एक तरफ लुढ़क गई। साथ ही शहर के किले की दीवारों के गिरने की भी पुष्टि मिली है। इसके अलावा कई आग लगने की खबरें आई हैं, साथ ही बिजली जाने के कारण 40,000 परिवारों के पास बिजली नहीं है और सड़कों एवं हवाई अड्डे को नुकसान हुआ है, जो सुरक्षा कारणों से बंद है। उधर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात हुई।
खबर है कि यह मुलाकात पिछले महीनों की तुलना में कम तनावपूर्ण थी, लेकिन दोनों ने सुलह की बात की। ट्रंप ने इस मुलाकात को बहुत सकारात्मक कहा और बताया कि कई जरूरी मुद्दों पर बात हुई। अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक समझौता, जिसका मकसद ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमले रोकना था ताकि नई बातचीत हो सके, कुछ ही दिनों तक चला। रातों रात तेहरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला किया। पेंटागन के मुताबिक सभी मिसाइलों को रोक दिया गया, लेकिन इस कार्यवाही से लड़ाई में नई तेजी आई। जवाब तेज था। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के सूत्रों के अनुसार अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया पर छापे मारे, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए। उधर मोजाम्बिक में लगभग 5 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यह सभी के लिए शिक्षा आंदोलन MEPT के अध्ययन के अनुसार है, जिसे मापीटो में सामाजिक और आर्थिक अध्ययन संस्थान IESE के साथ मिलकर किया गया था। इस अध्ययन में उन मुश्किलों पर जोर दिया गया है जो शिक्षा मंत्रालय के पहले से दिए गए तरीकों के बावजूद स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को स्कूल में बनाए रखने और फिर से जोड़ने में होती हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र

0: धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है,

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

जाओ आनंद के साथ अपनी रोटी खाओ और प्रसन्न होकर अंगूरी पियो, क्योंकि ईश्वर उसके लिए अपनी स्वीकृति दे चुका है। तुम हमेशा उज्जवल कपड़े पहनो और अपने सिर पर तेल लगाओ। ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो जीवन दिया है उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे हाथ जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है, न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 9वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या कर हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। नवा अध्याय हमें जीवन के अर्थ पर चिंतन करने के लिए बाध्य करता है। उक्त पदों में सुलेमान हम सबसे और युग युगांतर तक के मनुष्यों से आग्रह करता है कि वे जीवन और जीवन के आनंद को ईश्वर का वरदान माने, हर पल उसी की महिमा का गुणगान करें। उक्त पद ईश्वर की महान शक्ति को रेखांकित करते हैं। श्रोताओ, संभवतः इन शब्दों से उपदेशक ने यह कहना चाहा कि मुझे उम्मीद है कि ईश्वर ने तुम्हारे कार्यों को पहले ही से स्वीकृति दे दी है, क्योंकि यदि ईश्वर ने उसे स्वीकृति नहीं दी होती तो तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। श्रोताओ, सुलेमान खुद इस जीवन का सुख भोग चुका था, इसलिए अपने सुनने वालों को भी यही परामर्श देता है कि जो जीवन मिला है उसी में वे सुखी रहें, उसी में आनंद मनाएं। कहता है कि अपने व्यर्थ जीवन को सुखी बनाओ, बेहतर बनाने का प्रयास करो और उसे कोई अर्थ प्रदान करो। श्रोताओं, वैवाहिक जीवन की मांग होती है कि पति पत्नी के बीच प्यार हो, विश्वास हो और सम्मान हो, तभी उनका वैवाहिक जीवन सुखी रह सकता है। याद रखें कि जिंदगी की जिम्मेदारियों के बीच व्यक्ति की सारी मेहनत में हिम्मत का मिलना भी शामिल होता है। एक प्रकार से उपदेशक जीवन की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बीच जीने के लिए प्रोत्साहन देता है। कहता है, तुम्हारे हाथ जो भी काम करें उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है, न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। उपदेशक के इस नजरिए को हम प्रभु ईश्वर के प्रति अपनी अभी की सेवा में अपना सकते हैं। मनुष्य की सृष्टि इसीलिए हुई कि वह काम करता रहे, कर्मण्य रहे, सक्रिय रहे। उसे सब प्राणियों में श्रेष्ठ चुना गया ताकि उसे ईश्वर से मिली बुद्धि, ईश्वर से मिली इच्छा और स्मरण शक्ति से वह अपने जीवन में अपने दायित्वों का भली प्रकार अनुपालन करे और ईश्वर के प्रति दिन ब दिन धन्यवाद ज्ञापित किया करें।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के नवे अध्याय के 11वें और 12वें पदों पर गौर करें। इन पदों में उपदेशक मनुष्य पर आने वाली अप्रत्याशित विपत्तियों के बारे में आगाह करता है। ये पद इस प्रकार हैं। मैंने पृथ्वी पर एक और बात देखी, न तो दौड़ में सबसे द्रुतगामी जीतता और न युद्ध में सबसे शक्तिशाली विजयी होता है। न तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता, न तो सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि। सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि उसकी घड़ी कब आएगी। जिस तरह मछलियां क्रूर जाल में और पक्षी फंदे में फंस जाते हैं, उसी तरह मनुष्य विपत्ति के शिकार बनते हैं जो अचानक उन पर आ पड़ती है। सबसे पहले तो श्रोताओं, उपदेशक इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि न तो दौड़ में सबसे द्रुतगामी जीतता और न युद्ध में सबसे शक्तिशाली विजयी होता है। इसलिए यह याद रखना आवश्यक है कि दौड़ केवल तेज दौड़ने वालों के लिए नहीं होती है और न ही लड़ाई केवल ताकतवर लोगों के लिए। वस्तुतः उपदेशक सुलेमान ने सोचा कि यदि जिंदगी में यही सब कुछ है तो फिर जीवन का वास्तविक अर्थ है क्या? एक ऐसा संसार जहां केवल तेज दौड़ने वाले ही जीतें और सबसे बलवान ही युद्ध में विजयी होवें, तो जीवन का मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता। हर कोई जीतने का प्रयास कर सकता है। कहता है, क्योंकि सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर करता है। उपदेशक फिर से किस्मत या नियति की भावना से जुड़ जाता है और उससे जूझता रहता है। कहता है कि न तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता है और न ही सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि। सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर रहता है। केवल बुद्धिमान या ज्ञानी होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम सब के सब समय और संयोग के अधीन हैं। उपदेशक स्मरण दिलाता है कि जिस तरह मछलियां जाल में और पक्षी फंदे में फंस जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य विपत्ति के शिकार बन जाते हैं जो कि अचानक उन पर आ पड़ती है। अस्तु सावधान करता है कि हम हर समय आने वाले कल के लिए, आने वाले क्षण के लिए तैयार रहें। ईश नियमों का पालन करें, अपने दायित्वों का निर्वाह करें और सच्चाई से अपना जीवन यापन करें। आगे नवे अध्याय के अंतिम पदों में उपदेशक प्रज्ञा की उपेक्षा न करने का हम सबसे आग्रह करता है। कहता है, मैंने पृथ्वी पर प्रज्ञा का एक उदाहरण भी देखा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक छोटा सा नगर था, उसमें बहुत कम लोग रहते थे। एक शक्तिशाली राजा ने आकर उसके चारों ओर मोर्चाबंदी कर दी। वहां के एक दरिद्र और बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा से नगर की रक्षा की, किंतु बाद में किसी ने भी उस दरिद्र को याद नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि प्रज्ञा शक्ति से श्रेष्ठ है, किंतु दरिद्र की प्रज्ञा का तिरस्कार किया जाता और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मूर्खों के बीच राजा की चिल्लाहट की अपेक्षा बुद्धिमान की शांतिपूर्ण बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। युद्ध यंत्रों की अपेक्षा प्रज्ञा श्रेष्ठ है, किंतु एक ही गलती अच्छे से अच्छा काम बिगाड़ सकती है। श्रोताओ, यहां उपदेशक सुलेमान एक दरिद्र किंतु समझदार व्यक्ति की कहानी सुनाता है, जिसकी समझदारी ने एक शहर को एक बड़े राजा की घेराबंदी से बचाया। इसके बावजूद उस बेचारे को मृत्यु के बाद किसी ने भी याद नहीं किया, क्योंकि मौत सभी के लिए वजूद और होश खत्म कर देती है। सुलेमान ने विरोध किया कि मोर्चाबंदी से बचाने वाले एकमात्र व्यक्ति का हमेशा रहने वाला मतलब हो सकता था, किंतु वह भी उससे छीन लिया गया। श्रोताओ, इंसान जल्दी भूल जाते हैं, किंतु ईश्वर भले कर्मों को कभी नहीं भूलते। वे मनुष्य को उसका पुरस्कार अवश्य देते हैं। तिमोथी को प्रेषित दूसरे पत्र के 2 अध्याय के 19वें पद में संत पॉल लिखते हैं,
ईश्वर ने जो नींव डाली है वह सुदृढ़ है और उसमें ये शब्द अंकित हैं। प्रभु उन लोगों को जानता है जो उसके अपने हैं। अस्तु, जो प्रभु का नाम लेता वह अधर्म से दूर रहे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें बुधवार को कस्तेल गंदोल्फो के बोर्गो लाउदातो सी में आयोजित प्रार्थना सभा शांति का गीत में शामिल हुए। प्रार्थना सभा में अंद्रिया बोचेली और एबीएफ गायक दल उपस्थित थे, जिसमें युगांडा, पौत्रभूमि एवं इटली के बच्चों की आवाजें शामिल थी। जिस तरह जलधारा के पीछे पीछे चलकर अंततः उसके स्रोत तक पहुंचा जा सकता है,

उनके साझा प्रतिबिंब से निकलता है, एक ऐसा तालमेल जिससे पाने में दुनिया का संगीत हमारी मदद कर सकता है। लाउदातो सी उस शिक्षा केंद्र ने अंद्रेया बोचेली फाउंडेशन के साथ साझेदारी में इससे आयोजित किया था, जिसे मशहूर टेनर खुद प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह कार्यक्रम संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु की 800वीं वर्षगांठ के उत्सव का हिस्सा है। इसमें संत फ्रांसिस की लिखी हुई बातें जैसे सृष्टि का भजन, बाइबल पाठ और कई संत पापाओं के शब्द शामिल थे। संत पापा ने इस कार्यक्रम को खुशी का अवसर बताया, जिसमें अंद्रेया बोचेली और ABF वॉइस कोयर भी शामिल थे, जिसमें पौत्रभूमि, युगांडा और इटली के 164 बच्चे एवं युवा शामिल रहे। संगीत के प्रति प्यार के कारण एक साथ जमा हुए युवाओं और बच्चों में से कई युद्ध, गरीबी एवं पीड़ा भरा जीवन जी रहे हैं। पोप ने कहा कि उनके सुंदर गायन और सभा के अंत में की गई कई भाषाओं में प्रार्थना ने दिखाया कि कैसे संगीत अलग अलग सुरों को एक साथ ला सकता है और जहां हर व्यक्ति पूरी दुनिया में अपना खास योगदान दे सकता है। इस तरह गाने बजाने वालों का दल तालमेल और सहयोग का प्रतीक बन जाता है। पौत्र बाइबल में बताए गए स्वर्गीय गायक मंडली की कल्पना करते हुए पोप ने कहा कि उनकी एकता ईश्वर में पूर्ण आनंद पाने से आती है। उन्होंने आगे कहा, जब आप गा रहे थे तो क्या आपने ध्यान दिया कि कैसे संगीत ने हम सभी को एक नए अनुभव की ओर खींचा, एक ऐसा अनुभव जिसे हम में से कोई भी अकेले नहीं बना सकता। यही सुंदरता का अनुभव है जो एक नया क्षितिज खोलता और हमारे अंदर उस ओर बढ़ने की इच्छा जगाता है। उस क्षितिज की ओर बढ़ने का मतलब सिर्फ कुछ चीज नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को खोजना है। पोप ने आगे कहा, जैसे हम एक धारा के साथ उसके स्रोत तक वापस जा सकते हैं, वैसे ही संगीत की सुंदरता हमें उनसे मिलने के लिए बुलाती है जो खुद सुंदर हैं। ईश्वर ने आपको जो वरदान दिए हैं उन्हें बढ़ाते रहें और उन्हें आपको ईश्वर तक ले जाने दें। पोप ने युवाओं के बेचैन दिलों को स्वीकार किया और कहा कि सिर्फ ईश्वर ही उन्हें सच्चा आराम दे सकते हैं। याद रखें कि आप बड़े चीज़ों के लिए बने हैं और पूरी दुनिया आपके मकसद और आनंद की प्यास को बुझाने के लिए काफी नहीं है। इसके बाद पोप ने वहां मौजूद युवाओं को व्यक्तिगत रूप से भरोसा दिलाया कि संत पापा उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए, उनके परिवारों और उनके देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके शब्द शांति की प्रार्थना बन गए, जिसमें उन्होंने कहा कि यह दुनिया के उन सभी हिस्सों में राज करे जो हिंसा के कारण लगातार परेशान है। युवा प्रतिभागियों के लिए पोप के साथ मिलकर प्रार्थना करना 10 दिन की यात्रा का अंत था, जिसके दौरान गायकों और शिक्षकों ने गाने की कला के द्वारा प्रशिक्षण, दोस्ती और भाईचारे का अनुभव किया। पोप ने पढ़ाई और समाज में पिछड़े युवाओं की मदद करने के लिए अंद्रेया बोचेली फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त किया। पोप लियो 14वें ने अमेरिकी प्रशासक NBC को दिए एक साक्षात्कार में अमेरिका के इतिहास में प्रवासन की अहमियत पर जोर दिया और संकेत दिया कि वे अगले कुछ सालों में अपने जन्मभूमि का दौरा कर सकते हैं। कस्तेल गंदोल्फो में अपनी छुट्टियों के तुरंत बाद पोप लियो 14वें ने बुधवार शाम को अमेरिकी प्रसारक NBC के साथ एक छोटा साक्षात्कार दिया। यह साक्षात्कार अंद्रेया बोचेली और दुनिया भर के बच्चों के संगीत के साथ शांति के लिए एक प्रार्थना कार्यक्रम के बाद हुआ। साक्षात्कार में संत पापा ने अमेरिका के उन प्रयासों के बारे में बात की जो उन्हें पसंद हैं, खासकर देश के प्रवासन का स्वागत करने के इतिहास के बारे। जब उन्हें पूछा गया कि वे पहले अमेरिकी पोप होने के बारे में क्या सोचते हैं, तो पोप लियो ने स्पष्ट किया कि वे खुद को अक्सर एक ऐसे पोप के रूप में देखते हैं जो अमेरिकन हैं, और यह भी कहा कि उनका मकसद अमेरिकी होने के अर्थ को कम आंकना नहीं है। उन्होंने कहा, मैं अमेरिका में पैदा हुआ, मेरा परिवार अभी भी अमेरिका में है, मुझे अमेरिका से बहुत प्यार है, लेकिन मैं अपनी प्रेरिताई को एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में समझता हूँ, जो कि एक विश्वव्यापी कलीसिया की प्रेरिताई है और दुनिया भर के लोगों से बातचीत करने के लिए एक आवाज एवं अवसर बनना है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अमेरिका के बारे में क्या पसंद है, तो पोप ने अमेरिका की स्वतंत्रता, अवसर, पीढ़ियों से दुनिया भर के लोगों को अमेरिका का हिस्सा बनने के लिए बुलाने की भावना के सिद्धांत के बारे बात की। उन्होंने बताया कि उनके अपने दादा दादी अमेरिका में प्रवासी थे। उन्होंने कहा कि उनकी माँ के परिवार में ऐसे लोग थे जो गुलाम भी थे और गुलामों के मालिक भी। उन्होंने कहा

अगर आप कहें तो बड़े होने का एक इतिहास है और इस तरह का अनुभव जिसने मुझे खुद को अमेरिका की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक पहचानने में मदद की और मैं उन सिद्धांतों पर कायम हूँ जो इतने सालों से अमेरिकी होने के हिस्से रहे हैं और वे आगे भी जारी रहेंगे। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए CBCI कार्यालय ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के केंद्र में अपनी पहली राष्ट्रीय समिति का उद्घाटन किया जो भारत में कार्तिक अरीसा के शिक्षण प्रेरिताय को मजबूत करने में एक अहम मील का पत्थर होगा। उद्घाटन समारोह ने देश भर में कार्तिक शिक्षा के लिए सहयोग को मजबूत करने और एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए धर्माध्यक्षों 3 स्वतंत्र कलीसियाओं के प्रतिनिधियों राष्ट्रीय कार्तिक शैक्षणिक संगठनों के नेताओं और नवगठित राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को एक साथ लाया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

जाओ आनंद के साथ अपनी रोटी खाओ और प्रसन्न होकर अंगूरी पियो, क्योंकि ईश्वर उसके लिए अपनी स्वीकृति दे चुका है। तुम हमेशा उज्जवल कपड़े पहनो और अपने सिर पर तेल लगाओ। ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो जीवन दिया है उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे हाथ जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है, न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 9वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या कर हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 9वां अध्याय हमें जीवन के अर्थ पर चिंतन करने के लिए बाध्य करता है। उक्त पदों में सुलेमान हम सबसे और युग युगांतर तक के मनुष्यों से आग्रह करता है कि वे जीवन और जीवन के आनंद को ईश्वर का वरदान माने, हर पल उसी की महिमा का गुणगान करें। उक्त पद ईश्वर की महान शक्ति को रेखांकित करते हैं। श्रोताओ, संभवतः इन शब्दों से उपदेशक ने यह कहना चाहा कि मुझे उम्मीद है कि ईश्वर ने तुम्हारे कार्यों को पहले ही से स्वीकृति दे दी है, क्योंकि यदि ईश्वर ने उसे स्वीकृति नहीं दी होती तो तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। श्रोताओ, सुलेमान खुद इस जीवन का सुख भोग चुका था, इसलिए अपने सुनने वालों को भी यही परामर्श देता है कि जो जीवन मिला है उसी में वे सुखी रहें, उसी में आनंद मनाएं। कहता है कि अपने व्यर्थ जीवन को सुखी बनाओ, बेहतर बनाने का प्रयास करो और उसे कोई अर्थ प्रदान करो। श्रोताओं, वैवाहिक जीवन की मांग होती है कि पति पत्नी के बीच प्यार हो, विश्वास हो और सम्मान हो, तभी उनका वैवाहिक जीवन सुखी रह सकता है। याद रखें कि जिंदगी की जिम्मेदारियों के बीच व्यक्ति की सारी मेहनत में हिम्मत का मिलना भी शामिल होता है। एक प्रकार से उपदेशक जीवन की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बीच जीने के लिए प्रोत्साहन देता है। कहता है, तुम्हारे हाथ जो भी काम करें उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है, न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। उपदेशक के इस नजरिए को हम प्रभु ईश्वर के प्रति अपनी अभी की सेवा में अपना सकते हैं। मनुष्य की सृष्टि इसीलिए हुई कि वह काम करता रहे, कर्मण्य रहे, सक्रिय रहे। उसे सब प्राणियों में श्रेष्ठ चुना गया ताकि उसे ईश्वर से मिली बुद्धि, ईश्वर से मिली इच्छा और स्मरण शक्ति से वह अपने जीवन में अपने दायित्वों का भली प्रकार अनुपालन करे और ईश्वर के प्रति दिन ब दिन धन्यवाद ज्ञापित किया करे।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 9वें अध्याय के 11वें और 12वें पदों पर गौर करें। इन पदों में उपदेशक मनुष्य पर आने वाली अप्रत्याशित विपत्तियों के बारे में आगाह करता है। ये पद इस प्रकार हैं। मैंने पृथ्वी पर एक और बात देखी, न तो दौड़ में सबसे द्रुतगामी जीतता और न युद्ध में सबसे शक्तिशाली विजयी होता है। न तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता, न तो सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि। सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि उसकी घड़ी कब आएगी। जिस तरह मछलियां क्रूर जाल में और पक्षी फंदे में फंस जाते हैं, उसी तरह मनुष्य विपत्ति के शिकार बनते हैं जो अचानक उन पर आ पड़ती है। सबसे पहले तो श्रोताओं, उपदेशक इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि न तो दौड़ में सबसे द्रुतगामी जीतता और न युद्ध में सबसे शक्तिशाली विजयी होता है। इसलिए यह याद रखना आवश्यक है कि दौड़ केवल तेज दौड़ने वालों के लिए नहीं होती है और न ही लड़ाई केवल ताकतवर लोगों के लिए। वस्तुतः उपदेशक सुलेमान ने सोचा कि यदि जिंदगी में यही सब कुछ है तो फिर जीवन का वास्तविक अर्थ है क्या? एक ऐसा संसार जहां केवल तेज दौड़ने वाले ही जीतें और सबसे बलवान ही युद्ध में विजयी होवें, तो जीवन का मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता। हर कोई जीतने का प्रयास कर सकता है। कहता है क्योंकि सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर करता है। उपदेशक फिर से किस्मत या नियति की भावना से जुड़ जाता है और उससे जूझता रहता है। कहता है कि न तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता है और न ही सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि। सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर रहता है। केवल बुद्धिमान या ज्ञानी होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम सब के सब समय और संयोग के अधीन हैं। उपदेशक स्मरण दिलाता है कि जिस तरह मछलियां जाल में और पक्षी फंदे में फंस जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य विपत्ति के शिकार बन जाते हैं जो कि अचानक उन पर आ पड़ती है। अस्तु सावधान करता है कि हम हर समय आने वाले कल के लिए, आने वाले क्षण के लिए तैयार रहें। ईश नियमों का पालन करें, अपने दायित्वों का निर्वाह करें और सच्चाई से अपना जीवन यापन करें। आगे 9वें अध्याय के अंतिम पदों में उपदेशक प्रज्ञा की उपेक्षा न करने का हम सबसे आग्रह करता है। कहता है, मैंने पृथ्वी पर प्रज्ञा का एक उदाहरण भी देखा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक छोटा सा नगर था, उसमें बहुत कम लोग रहते थे। एक शक्तिशाली राजा ने आकर उसके चारों ओर मोर्चाबंदी कर दी। वहां के एक दरिद्र और बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा से नगर की रक्षा की, किंतु बाद में किसी ने भी उस दरिद्र को याद नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि प्रज्ञा शक्ति से श्रेष्ठ है, किंतु दरिद्र की प्रज्ञा का तिरस्कार किया जाता और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मूर्खों के बीच राजा की चिल्लाहट की अपेक्षा बुद्धिमान की शांतिपूर्ण बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। युद्ध यंत्रों की अपेक्षा प्रज्ञा श्रेष्ठ है, किंतु एक ही गलती अच्छे से अच्छा काम बिगाड़ सकती है। श्रोताओं, यहां उपदेशक सुलेमान एक दरिद्र किंतु समझदार व्यक्ति की कहानी सुनाता है, जिसकी समझदारी ने एक शहर को एक बड़े राजा की घेराबंदी से बचाया। इसके बावजूद उस बेचारे को मृत्यु के बाद किसी ने भी याद नहीं किया, क्योंकि मौत सभी के लिए वजूद और होश खत्म कर देती है। सुलेमान ने विरोध किया कि मोर्चाबंदी से बचाने वाले एकमात्र व्यक्ति का हमेशा रहने वाला मतलब हो सकता था, किंतु वह भी उससे छीन लिया गया। श्रोताओं, इंसान जल्दी भूल जाते हैं, किंतु ईश्वर भले कर्मों को कभी नहीं भूलते। वे मनुष्य को उसका पुरस्कार अवश्य देते हैं। तिमोथी को प्रेषित दूसरे पत्र के 2वें अध्याय के 19वें पद में संत पॉल लिखते हैं,
ईश्वर ने जो नींव डाली है वह सुदृढ़ है और उसमें ये शब्द अंकित हैं, प्रभु उन लोगों को जानता है जो उसके अपने हैं, अस्तु जो प्रभु का नाम लेता वह अधर्म से दूर रहे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें बुधवार को कस्तेल गंदोल्फो के बोर्गो लाउदातो सी में आयोजित प्रार्थना सभा शांति का गीत में शामिल हुए। प्रार्थना सभा में अंद्रिया बोचेली और एबीएफ गायक दल उपस्थित थे, जिसमें युगांडा, पौत्रभूमि एवं इटली के बच्चों की आवाजें शामिल थी। जिस तरह जलधारा के पीछे पीछे चलकर अंततः उसके स्रोत तक पहुंचा जा सकता है, वैसे ही संगीत की खूबसूरती हमें ईश्वर की ओर ले जा सकती है, अर्थ और खुशी की उस प्यास को बुझा सकती है जिससे दुनिया नहीं बुझा सकती। यही छवि पोप लियो चौदहवें ने 29 जुलाई की शाम कस्तेल गंदोल्फो के परमधम पीठे उद्यान बोर्गो लाउदातो सी में मेतुसेला नामक पुराने सदाबहार बालूत पेड़ की छाया में हुए शांति के गीत के दौरान अपने चिंतन में पेश की। धर्म ग्रंथ में बताए गए दूतों और संतों की मंडली को याद करते हुए पोप ने कहा कि वे हर समय गाते नहीं रहते, बल्कि उनके स्वर का पूर्ण तालमेल ईश्वर के बारे में उनके साझा प्रतिबिंब से निकलता है। एक ऐसा तालमेल जिससे पाने में दुनिया का संगीत हमारी मदद कर सकता है। लाउदातो सी उस शिक्षा केंद्र ने अंद्रिया बोचेली फाउंडेशन के साथ साझेदारी में इससे आयोजित किया था, जिससे मशहूर टेनर खुद प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह कार्यक्रम संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु की 800वीं वर्षगांठ के उत्सव का हिस्सा है। इसमें संत फ्रांसिस की लिखी हुई बातें जैसे सृष्टि का भजन, बाइबल पाठ और कई संत पापाओं के शब्द शामिल थे। संत पापा ने इस कार्यक्रम को खुशी का अवसर बताया, जिसमें अंद्रिया बोचेली और एबीएफ वॉइस कॉयर भी शामिल थे, जिसमें पौत्रभूमि, युगांडा और इटली के 164 बच्चे एवं युवा शामिल रहे। संगीत के प्रति प्यार के कारण एक साथ जमा हुए युवाओं और बच्चों में से कई युद्ध, गरीबी एवं पीड़ा भरा जीवन जी रहे हैं। पोप ने कहा कि उनके सुंदर गायन और सभा के अंत में की गई कई भाषाओं में प्रार्थना ने दिखाया कि कैसे संगीत अलग अलग सुरों को एक साथ ला सकता है और जहां हर व्यक्ति पूरी दुनिया में अपना खास योगदान दे सकता है। इस तरह गाने बजाने वालों का दल तालमेल और सहयोग का प्रतीक बन जाता है। पौत्र बाइबल में बताए गए स्वर्गीय गायक मंडली की कल्पना करते हुए पोप ने कहा कि उनकी एकता ईश्वर में पूर्ण आनंद पाने से आती है। उन्होंने आगे कहा, जब आप गा रहे थे तो क्या आपने ध्यान दिया कि कैसे संगीत ने हम सभी को एक नए अनुभव की ओर खींचा, एक ऐसा अनुभव जिसे हम में से कोई भी अकेले नहीं बना सकता। यही सुंदरता का अनुभव है जो एक नया क्षितिज खोलता और हमारे अंदर उस ओर बढ़ने की इच्छा जगाता है। उस क्षितिज की ओर बढ़ने का मतलब सिर्फ कुछ चीज नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को खोजना है। पोप ने आगे कहा, जैसे हम एक धारा के साथ उसके स्रोत तक वापस जा सकते हैं, वैसे ही संगीत की सुंदरता हमें उनसे मिलने के लिए बुलाती है जो खुद सुंदर हैं। ईश्वर ने आपको जो वरदान दिए हैं उन्हें बढ़ाते रहें और उन्हें आपको ईश्वर तक ले जाने दें। पोप ने युवाओं के बेचैन दिलों को स्वीकार किया और कहा कि सिर्फ ईश्वर ही उन्हें सच्चा आराम दे सकते हैं। याद रखें कि आप बड़े चीजों के लिए बने हैं और पूरी दुनिया आपके मकसद और आनंद की प्यास को बुझाने के लिए काफी नहीं है। इसके बाद पोप ने वहां मौजूद युवाओं को व्यक्तिगत रूप से भरोसा दिलाया कि संत पापा उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए, उनके परिवारों और उनके देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके शब्द शांति की प्रार्थना बन गए, जिसमें उन्होंने कहा कि यह दुनिया के उन सभी हिस्सों में राज करे जो हिंसा के कारण लगातार परेशान है। युवा प्रतिभागियों के लिए पोप के साथ मिलकर प्रार्थना करना 10 दिन की यात्रा का अंत था, जिसके दौरान गायकों और शिक्षकों ने गाने की कला के द्वारा प्रशिक्षण, दोस्ती और भाईचारे का अनुभव किया। पोप ने पढ़ाई और समाज में पिछड़े युवाओं की मदद करने के लिए अंद्रिया बोचेली फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त किया। पोप लियो चौदहवें ने अमेरिकी प्रशासक NBC को दिए एक साक्षात्कार में अमेरिका के इतिहास में प्रवासन की अहमियत पर जोर दिया और संकेत दिया कि वे अगले कुछ सालों में अपने जन्मभूमि का दौरा कर सकते हैं। कस्तेल गंदोल्फो में अपनी छुट्टियों के तुरंत बाद पोप लियो चौदहवें ने बुधवार शाम को अमेरिकी प्रसारक NBC के साथ एक छोटा साक्षात्कार दिया। यह साक्षात्कार अंद्रिया बोचेली और दुनिया भर के बच्चों के संगीत के साथ शांति के लिए एक प्रार्थना कार्यक्रम के बाद हुआ। साक्षात्कार में संत पापा ने अमेरिका के उन प्रयासों के बारे में बात की जो उन्हें पसंद हैं,
खासकर देश के प्रवासन का स्वागत करने के इतिहास के बारे। जब उन्हें पूछा गया कि वे पहले अमेरिकी पोप होने के बारे में क्या सोचते हैं, तो पोप लियो ने स्पष्ट किया कि वे खुद को अक्सर एक ऐसे पोप के रूप में देखते हैं जो अमेरिकन हैं, और यह भी कहा कि उनका मकसद अमेरिकी होने के अर्थ को कम आंकना नहीं है। उन्होंने कहा, मैं अमेरिका में पैदा हुआ, मेरा परिवार अभी भी अमेरिका में है, मुझे अमेरिका से बहुत प्यार है, लेकिन मैं अपनी प्रेरिताई को एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में समझता हूँ, जो कि एक विश्वव्यापी कलीसिया की प्रेरिताई है और दुनिया भर के लोगों से बातचीत करने के लिए एक आवाज एवं अवसर बनना है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अमेरिका के बारे में क्या पसंद है, तो पोप ने अमेरिका की स्वतंत्रता, अवसर, पीढ़ियों से दुनिया भर के लोगों को अमेरिका का हिस्सा बनने के लिए बुलाने की भावना के सिद्धांत के बारे बात की। उन्होंने बताया कि उनके अपने दादा दादी अमेरिका में प्रवासी थे। उन्होंने कहा कि उनकी माँ के परिवार में ऐसे लोग थे जो गुलाम भी थे और गुलामों के मालिक भी। उन्होंने कहा, अगर आप कहें तो बड़े होने का एक इतिहास है और इस तरह का अनुभव जिसने मुझे खुद को अमेरिका की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक पहचानने में मदद की, और मैं उन सिद्धांतों पर कायम हूँ जो इतने सालों से अमेरिकी होने के हिस्से रहे हैं और वे आगे भी जारी रहेंगे। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए CBCI कार्यालय ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के केंद्र में अपनी पहली राष्ट्रीय समिति का उद्घाटन किया, जो भारत में कार्तिक कलीसिया के शिक्षण प्रेरिताई को मजबूत करने में एक अहम मील का पत्थर होगा। उद्घाटन समारोह ने देश भर में कार्तिक शिक्षा के लिए सहयोग को मजबूत करने और एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए धर्माध्यक्षों, 3 स्वतंत्र कलीसियाओं के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय कार्तिक शैक्षणिक संगठनों के नेताओं और नवगठित राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को एक साथ लाया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।